0: आपने दिन के बारे में जान चाहौ तसो हो भोले आश ज्योतिष दर्पण ज्योतिष कार्यालय भरतपुर चितवन में
1: हमारा यहाँ वृंदावन बठे ज्योतिष विद्या पढ़वटी आया ज्योतिष विद्या का बारे में बहुत ही जानकारी भैया बहुत ही वर्ष अगाड़ी बठे ज्योतिष विद्या का बारे में जानने देश र परदेश में सम्मान र ख्याति पाया ज्योतिष पंडित लक्ष्मण सुवेदी ने कंप्यूटर का माध्यम बठे चिना चिठा बनाने रे चिठा भाग्य हेद्या घर बनाऊना की लेखा माटो हेद्या वास्तुशास्त्र का बारे में सब बताने पृथ्वी को उद्धार गद्या रत्नले जन्तर बीज लाउने जन्म कुण्डलीमा भएको दोष ग्रहको शान्ति विशेष धार्मिक रे बौद्धिक विधिवठे गद्या
0: सम्पर्क की लेखाई ज्योतिष पण्डित लक्ष्मण सुवेदी ज्योतिष दर्पण ज्योतिष कार्यालय भरतपुर चितवन
1: फोन गद्दा की लेखा फोन नम्बर 9845-39-76-58 रे 9814-27-36-01 तमु फोन बठेले आफ्नो भाग्य हेर्न सकन्छौ आज संगीतमय पुराण लगाउनक लेखालाई सम्झन सकन्छौ
2: अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ संस्कार र संस्कृतिको संवाहक सनातन रेडियो नेटवर्कमा कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण।

0: इम्प्लान्ट गर्ने दाँतको ओपीडी सेवा।
1: सम्पर्क ओम शान्ति डेन्टल हस्पिटल, दमक 5 बेलडागी रोड, डीमैक्स अगाड़ी। सम्पर्क नम्बर 023-575-906। ओम शान्ति डेन्टल, मुस्कान सधैं।

मा जाम साथी धुमधाम राइड सपन नयाँ इभी मेरो टियागो इभी सँग लाइफ छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, catch the fun. Go!